0: Elambo FM 89.6 MHz.
1: अब रङ फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथे नला विश्वासी चमक बसुगो जु रङसे तयारी लाबा दुई हिन्दा जयमसी तथा लासो नमस्कार स्पार्क माइ फेट अर्थात नला विश्वासी समक बस्युगो अङ्क बाह्र रे रङनिता स्वागत मुला नाबियोग तामाङ तिगा रङ रङला बेनान तिङसे परमेश्वरला सेवा लाभरी आवश्यक त्याग कादे लादोला इच्छारी गम्भीर मुसुला मती एघार अध्यायला सोह्र दिन एक्काइस दन्देला निगदेदा नै खरङ लसी गोन लसे थे निगदे मि ग्याम्री क्यार क्लाङबा कोला गदे राङबन हिन्ना थे निगदे से राङला रो गदेदा न्यसी चुरङ बिमुला खोराजिन देन बेर्सेदा मि गदे एनी गदे से परमेश्वर ग्याम सजय याङला टिग्द विषम एनी गदेला नाम सरी लब राङबा उद्देगला गे गदे तुरोस देन सिदोन सहरी लबाई हिंसम ओनमान थेनी गदेसी बोरा खोन्सी नेब्रा फोर्सी रङ राङला पाप ठासी परमेश्वरपट्टि दोसेला मुला परमेश्वर देन राङला लुई लागिरी याकर्की अद्भुत देन लानन रोमाञ्चक योजना मुला तिगा रङ रोसे राङला तिगा लाबरी पङ्सुमुला खेला लागि रङ तयार लाभन मुसुला तिगा रङ यसु ख्रिस्ट बारेरी तयार मुसुला नाचुरी मुला नादा पुइसुगो रङ नादा हानङ लसुला ना थेरी निला थेन दे तिगा रङ देन आवश्यक विश्वास मुला कि परमेश्वर से रङला लुइरी रङला आत्मिक लक्षा गदे पुरा लाभरी बेनन्ताम पिन्सुला यदि थेराङ हिन्बा विषम परमेश्वर से रङला लुइला लागिरी परमेश्वर से बोलवाट पुरा लाबरी रङ तयार लसुला विवा ताम्रे रङ तयार मुसुला मर्कुस एक अध्यायला पैतिस स्योरेन मिम राङबा भन्दा नत्सन यसु सोन्जी सुनसान ग्लारी प्रार्थना लाबरी फेजी याङला तयारीला बेनन भन्दा महत्वपूर्ण बो प्रार्थना हिन्बा याङसे यसु देन मिला सम्बन्ध थानबरी एकान्त दुई फ्लागसे छनोट लादोला देन चु एकान्त दुईरी यसुसे याङला आत्मज्ञान याङदा प्रकट लाभरी ग्लगाप ताबा नेसन कादे ज्ञानवाला लागिरी दुई तेला समावेश मुला हितोपदेश चौबिस अध्यायला सताइस फिर्क्याप लागे जिन्ना लाउ थेन दे राङला खेतारी तयार लाउ थेन दे राङला तिम सो परमेश्वर से राङदा परमेश्वर से पिन्सु बगेन बोलोवाडला लागिरी तयार लाभरी सेमलासु मुला उत्पत्तिला पुस्तकरी चु तयारीला अवस्था तेह्र हिन्द चौध वर्ष दोन जारी ताजी नाछ थे मिश्र लुइरी दास ताजी थेलिछ थेरा जेली बजी थेराङमा वर्षा गदे यसेब्दा परमेश्वर सिंह मिश्रला दोस्रो बेनन भन्दा महत्वपूर्ण मिला रूपी उच्च लसुबारे तयार लाबरी आवश्यक मुला यदि चुसे छोन रूपी तयार अरे मुला विषम थेगेन नेतृत्व देन झिमेहरूला पद्री थानमा हावा प्रसिद्ध आत्मिक रूपी सम्हामला बारी हामला तासेला आरे मुबा परमेश्वर से मछ थेदा याकर्गी नम्र मि सुमुजी सोसुजी जोसी महसुस लजिकी परमेश्वर से थेदा लाबरी सेम्बाला बलवाट पुरा लाबरी थे राङलान भन्दा परमेश्वरलाई शक्ति दि पिनबा आवश्यक मुबा एक कोरन्थी नौ अध्यायला पच्चिस तिगै खेलरी भो किन्बा मिसे जम्मन थरीला तालिम किन्दोला थेनी गदेसी म्लासी मिबा इनाम याङबाला लागिरी थेरङ लामुला तर याङसी चा खाइमै आहाम इनाम याङबाला लागिरी थेरङ लबामुला तयारी हाइमा दमन सजिलो आतामुला प्रतिस्पर्धा गम्भीरतासे किन्बा देन पौडेल डासेला चाहना थान्बा खेलाडीसे योनन रेसी तालिम किन्बा ता लामुला यदि रङसी पुराण तिङसे परमेश्वरलाई सेवा लाभा संकल्प लसुबा मुला देन दत्ते संघर्ष देन अनुभव लस्युबा मुला विषम धैर्य लस्युगो दत्ते रंगसे भोक्तिबा मिगदी याकर्खी दे गेन उद्देश्य लागिरी हिन्बा आमेन रंगनेजे परमेश्वरला वचन ग्याम आशिष यंगै आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेट कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 रि सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: Time check. It's 7 PM.
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।